सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

are listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग RJ Tanisha के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

आतिफ असलम की आवाज में करीब करीब सिंगल से जाने दे, खूबसूरत गाना, आसान नहीं होता जाने देना पर भलाई उसी में होती है ना। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम, तनिष आगे जी आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स लेकर। थर्सडे का दिन सितंबर 10th, फाइनली द वीकेंड इज हियर, वी ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर इट एंड आई तो ईगरली वॉज बिकॉज राइट नाउ जो वेदर हो रहा है ना, घर से बाहर निकलना फील्स लाइक अ टास्क, बट देन आई एम कमिंग हियर एवरी डे टू टॉक टू यू, तो वो थोड़ा सा यू नो ऐसे मैनेज हो जाता है, बैलेंस हो जाती है चीज़ें, बिकॉज दिस इज ऑल्सो सच अ ब्यूटिफुल टाइम आई स्पेंड विद यू गाइज।

0: Nescafe Basement se Mehbooba and then KK ki awaaz mein. थोड़ा नॉस्टैल्जिक तड़का भी तो चाहिए होता है.
1: सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए.
0: ओजी विल ऑलवेज बी ओजी यार. वीकेंड वाइब्स, सब चीजों की तैयारी करके आई हूँ मैं. पूरे चार घंटे ढेर सारी बातें करेंगे, बहुत कमाल कमाल के गाने सुनेंगे और शुरुआत करेंगे किससे, आपसे, आपके हाल चाल जानने से. आई हैव ऑलरेडी गॉट अ फ्यू गुड मॉर्निंग मैसेजेस ओवर हियर. आप भी फटाफट चेक कर दीजिए मुझे एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग 3311063 पर. फिलहाल भेज रही हूँ मुसाफिर कैफे से तेरा हुआ, गर्वित प्रियांश और हंसिका की आवाज में. सुनते रहिए रेडियो, बिंदास मेरी जान.

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: From vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में shopping करें best prices पर, सिर्फ Nesto Hypermarket में। Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर। तो अपनी shopping को बनाएं और भी profitable। Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.
3: Kabhi usse noor noor kehta hoon. Kabhi main hoor hoor kehta hoon.

0: दिलजीत दोसांझ की आवाज़ में सूरमा मूवी से खूबसूरत गाना इश्क दीवाजियां, स्टे ट्यून्ड कह रही हूँ। देखो तनीषा के साथ हैं आप रेडियो ऑलम 106.3 एफएम पर, बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर और मैसेजेस आ चुके हैं जी, आइए पढ़ते हैं। शशिकांत पाटिल जी ने भेजा है, गुड मॉर्निंग, मे योर मॉर्निंग शाइन विद पीस लव एंड होप फिलिंग योर सोल विद फ्रेश एनर्जी एज यू स्टेप इनटू दिस डे, मे एवरी मोमेंट ब्रिंग यू जॉय एंड रीजंस टू स्माइल। आई एम विशिंग दिस फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज वीकेंड है, पूरे वीकेंड के लिए यही उम्मीद करती हूँ मैं। नाजनी जी का भी मैसेज आया है एंड शी सेज, व्हेन वी बिगिन आवर डेज बाय स्पेंडिंग टाइम विद गॉड इट ब्रिंग्स हीलिंग, देयर इज नो स्क्रिप्ट, नो रेस, नो रूल्स, देयर इज ओनली पीस, करेज एंड स्ट्रेंथ फॉर द डे अहेड। सो सो सो ट्रू, थैंक यू सो मच नाजनी जी। एंड अबराज जी का मैसेज है, हैप्पी थर्सडे बोल रहे हैं वो हम सबको। एंड वी हैव जुल्फी जी, he says there is light ahead if I stay focused on taking one step at a time. Exactly, sab kuch you know ek saath kar lene mein na chaos ho jata hai, to ek bhi cheez theek se nahi hoti hai. Start doing by you know focusing on that one thing first, jo bahut extreme aapko prioritize karni padegi cheeze pehle, to jo sabse zyada zaruri hai jiske upar immediate effect chahiye, you know usme pehle effort dalo, then वन बाय वन यू नो एक एक दिन करके वक्त ले लेकर बाकी की सारी चीज़ें सॉर्ट करो। ऐसे नहीं होता है कि एक दिन आज डिसाइड कर लिया आज आई एम गोना गेट माय लाइफ टुगेदर, ऐसे नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि फैलाने में वक्त लगा है तो टुगेदर लाने में भी थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। संतु जी का भी गुड मॉर्निंग आया है, गुड मॉर्निंग एवरी वन, बड़े दिन हो गए ना मैंने मेरी वाली गुड मॉर्निंग नहीं करी है आपको, वो मैं कुछ देर में लौट कर आती हूँ क्योंकि अभी गाना इंतजार कर रहा है, कूल सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू, स्टे ट्यून्ड एंड रेडियो बिंदास।
1: ओसम
0: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
1: ओसम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: रेडी टू लर्न, टू प्ले, टू ग्रो विद मज़राती।
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मज़राती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ।
1: मिल्क, चीज, योगर्ट, लवली एग्स,
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मज़राती है आपकी पूरी फैमिली के लिए।

0: Tanisha.
1: Kiki ki awaaz mein life in a metro se ho meri job beautiful track and Tanisha ke sath hum radio 11 on 6.3 FM par banda smalling chill rahe yahan par I read something and it actually made me think ki haan yaar ye to sahi baat hai so the quote says there is beauty in not knowing everything and sometimes ignorance is a bliss not knowing a lot is a bliss क्योंकि हो सकता है ना हमें क्यूरियोसिटी रहती है कि यार मुझे और ज़्यादा पता चल जाएगा ना सर्टेन चीज़ों के बारे में दुनिया के बारे में तो मैं आई थिंक और खुश हो जाऊँगी बट ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि अगर मुझे और ज़्यादा पता चल गया तो शायद मैं और सैड भी हो जाऊँ यू नेवर नो राइट तो इस वक्त मुझे जितना पता है आई थिंक उतना मेरे लिए इनफ है एंड आई शुड बी कंटेंट इन दैट क्योंकि ग्रीड तो देखो इंसान को कहीं नहीं ले जाती और इसकी ज़्यादा जानने की ग्रीड भी हमें कहीं नहीं ले जाएगी यू नेवर नो यू नो देर इज़ बोथ चांसेस की हो सकता है आप बहुत खुश हो जाएं एंड यही कोशिश रहती है कि वही हो लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है कि और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएं और ज़्यादा आप सैड हो जाएं एक स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाए कि यार इट वुड हैव बीन बेटर अगर मुझे ये चीज़ें पता ही नहीं होती सो इतना ज़्यादा क्यूरियस होने की ज़रूरत नहीं है राइट नाउ जितना पता है उतना इनफ है ठीक है फिलहाल भेजूँ एक बहुत कमाल गाना ओनली ऑन रेडियो 11 सी यू

0: Tanisha.
1: Tanisha. अरिजीत सिंगर साशा तिरुपति की आवाज में रेत जरा से यतरंगी रे मूवी से बड़ा ही सुंदर गाना होने ऑन रेडियो 106.3 FM तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. देखो व्हेन इट कम्स टू नंबर्स ना तो हमें लगता है कि ओके बेरेबल होगा, बट व्हेन यू गो आउट आई मीन कुछ दो तीन दिन से तो क्रेजी हो गया. आई फील कि अब जाते जाते ये समर हमें और ज्यादा तपा के जा रहे हैं. राइट नाउ द टेम्परेचर इज 36 डिग्रीज एंड इट फील्स लाइक 37, बट इन द आफ्टरनून हीट विल बी सुपर सुपर स्वेल्टरिंग हॉट. सो जितना हो सके आउटडोर एक्टिविटीज को तो बिल्कुल अवॉइड ही करिए. एंड इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी. यस्टरडे आई वॉज गेटिंग सो अनॉयड कि भाई ये एसी महसूस क्यों नहीं हो रहा है चलता हुआ. एंड दिस मॉर्निंग ऑल्सो सेम, बट वेन यू सी द टेम्परेचर लगता है कि अरे अभी तो चीज़ें काम हो गई है. मतलब यू नो अर्लियर इट वॉज 42-43, इससे कम तो हो ही नहीं रहा था. तो इसीलिए यहाँ टेम्परेचर देख के लगता है कि बेहतर हो रहा है, पर ये हो बेहतर होने के पहले जो हमें क्रेजी करके जाएगा वो क्लियरली नज़र आ रहा है. बट ठीक है, कुछ दिनों की बात है. कहते हैं 15 सितंबर से चीज़ें बेहतर होंगी, यू नो इट विल कूल डाउन अ बिट एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट. 5 days मोर यार, इट्स ओके. सेंडिंग फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू. स्टे ट्यून ऑन जियो बिंदास
0: रेडियो ऑलिव पर. Song of the Hour. Yeah, guys.

From vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में shopping करें best prices पर। सिर्फ Nesto Hypermarket में। Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर। तो अपनी shopping को बनाए और भी profitable। Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa.

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग आरजे तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: तनिषा
1: तनिषा कबीर सिंह से तुझे कितना जाने लगे हम, अरिजीत सिंह की आवाज में खूबसूरत गाना। मूवी चाहे कैसी भी हो, पीपल हैड यू नो डिफरेंट रिएक्शंस, डिवाइडेड थी थोड़ी सी ऑडियंस, पर साउंड ट्रैक बहुत कमाल था इसका यार। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम, तो जो आपके सैड बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं पर आई ना वीकेंड वाली फील एकदम।
2: साहिबा आए घर काहे ना, ऐसे तो सताए ना, देखूं तुझको चैन आता है।
1: अगर आदित्य रिखारी की जर्नी आप देखेंगे ना, देन यू विल रियलाइज कि यार वक्त आता है, आप कितना भी जोर डाल लो अगर सही टाइम नहीं है तो चीजें नहीं बनेंगी, अभी नहीं आपको वो अप्रिसिएशन मिलेगा, वो प्यार मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं, बिकॉज राइट टाइम कम्स इवेंचुअली मेरी जान। ये गाना क्रेजी एंड मूवी वाज आल्सो एब्सोल्युटली क्रेजी, यस आई हैव वॉच्ड दैट मूवी। कल्ट क्लासिक मूवी का कल्ट क्लासिक गाना, लेकिन फिलहाल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काफी वक्त बाद मुझे एक सवाल मिला था, मैंने कहा यार ये तो पूछना बनता है, तो बताएं मुझे अगर मछली जल की रानी है तो राजा कौन है, अगर मछली जल की रानी है तो राजा कौन है। 3311 1063 पर बताएं मुझे, और कॉल भी कर सकते हैं 4444 1063 पर।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: From vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट prices पर सिर्फ Nesto Hypermarket में groceries हो fresh food हो या daily essentials सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी profitable Nesto Hypermarket 152nd branch now open in old passport office Algarafa
2: गाड़ी के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ
3: Hi Radio Olive 106.3 listener. This is Shah Rukh Khan.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Akshay Kumar.
6: Hi, this is Anushka Sharma.
7: And I'm Ashwin Varsini.
8: This is Ranveer Singh. Stay tuned.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनिषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: Tanisha. You're listening to Radio 11.6.3 FM. Tanisha, I'm Kiss Seth with us morning's children.
2: Lame Jams.
1: और मैंने पूछा था कि अगर मछली जल की रानी है तो राजा कौन है, तो एक तो मुझे जवाब आया है कि जंगल का राजा शेर है। करेक्ट बात है, पर सवाल ये था नहीं, मैंने बस इतना पूछा था कि अगर मछली जल की रानी है तो राजा कौन है जी, और मेरे सवाल में ही जवाब था जी। और मुझे सऊदी अरेबिया से मैसेज आया है, सर ने अपना नाम नहीं लिखा है शायद, नहीं नाम नहीं लिखा है, बीइंग ह्यूमन है इनका नाम जो मुझे नज़र आ रहा है, एंड ही जस्ट टोल्ड मी अ फनी पोएम। ओके, मगरमच्छ इज़ द आंसर फॉर हिम, मगरमच्छ जल का राजा है। जीवन इसका सीधा साधा है, इसके हाथ लगाओ तो निपट जाओगे, दूर से देखो तो बच जाओगे। सही बात है, बट दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। आई हैव गॉट द करेक्ट आंसर फ्रॉम सलीम जी, असमा का मैसेज आया हुआ है, देन देर इज साबिया, देर इज निताशा, सली का मैसेज है मुझे, एंड द करेक्ट आंसर इज जल बाबा। मछली जल की रानी है ना, तो जल राजा हुआ जी। आई नो आई सेड इट इज लेम जैम्स, प्लीज अब गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। सेंडिक्स जबरदस्त हिट है और मैं लौट कर आती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बताना है जो कतर में हो रहा है जी। हाँ, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
3: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: From vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट prices पर सिर्फ Nesto Hypermarket में groceries हो fresh food हो या daily essentials सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी profitable Nesto Hypermarket 152nd branch now open in Old Passport Office Algarafa

0: Ready?
1: Ready!
0: To learn!
1: Yes!
0: To play!
1: Absolutely!
0: To grow!
1: With Maserati!
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
1: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट

0: दास मॉर्निंग, दास मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: बिंदास
2: रेडी
3: टू लर्न
2: टू प्ले टू ग्रो
4: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
5: Hi Radio Olive.
6: Radio Olive.
5: 106.3 listeners. This is Shahrukh Khan.
6: Shahrukh Khan.
7: I'm in number one. Radio Olive.
8: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
9: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
10: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: तनिषा।
1: अरिजीत सिंह की आवाज में दे दे प्यार दी मूवी से तू मिला तो है ना, ब्यूटीफुल ट्रैक। एंड जब कुछ हमें मिल जाता है ना जिंदगी में बहुत सारे एफर्ट्स डालने के बाद, तो उसे इक्वल इंपॉर्टेंस देना है उसके मिलने के पहले जो देते थे, ठीक है? क्योंकि कभी कभी होता है अनइंटेंशनली भी हम ना सोचते हैं कि यार अब तो मिल गया, अब कहाँ जाना है, और हम इंपॉर्टेंस देना वो जो सेम एफर्ट्स हम डालते थे वो डालना छोड़ देते हैं। And that's not okay, मेरी जान। तनिषा के साथ है आप रेडियो 106.3 FM पर बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर। एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने लॉन्च कर दिया है फर्स्ट फेज ऑफ मोवान ऐप। एंड ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर रिक्रूटिंग डोमेस्टिक वर्कर्स। जी हाँ, ये जो है पूरा प्रोसेस आपका रिक्रूटमेंट का सिंपल, फास्टर और मोर ट्रांसपेरेंट कर देगा, ठीक है? इसमें आप डोमेस्टिक वर्कर्स चूज कर सकते, यू कैन कंपेयर एंड सेलेक्ट लाइसेंस रिक्रूटमेंट ऑफिसेस, और आप इंटरव्यूज भी कंडक्ट कर सकते हैं। जो रिक्रूटमेंट ऑफिसेज हैं वो मैनेज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस थ्रू वन डिजिटल सिस्टम, उनके लिए भी चीजें काफी फिजिबल और आसान हो जाएगी और हैसल फ्री हो जाएगी। ये जो प्लेटफॉर्म है इट ऑल्सो सपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट फी पेमेंट्स। जो एम्प्लॉयर्स हैं दे कैन ट्रैक द रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिजिटली इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग एवरीथिंग सेपरेटली, यू नो हर चीज के लिए कॉल करना एंड एवरीथिंग। नो, नाउ यू हैव वन प्लेटफॉर्म, यू हैव टू गो देयर एंड यू कैन सी ऑल द प्रोसेस, द अपडेट्स विच आर कमिंग। And the ministry also gets real-time information about the recruitment offices. You know, it will help them also to monitor the performance and identify problems quickly. So, it is such a amazing initiative. Again, bahut kamal, you know, istemal of the technology. Jasmine Sandler's ki awaaz mein kuch hi der mein aane wala hai.
2: Kaise kahun? कैसे होता है,
1: मुश्किल काम है ये, तो नहीं हो पाएगा।
2: अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं?
1: मैं बताती हूँ यार, मस्त गाने सुनो रेडियो ऑलिव पे, बिकॉज क्या कमाल प्लेलिस्ट लाइंड अप है आपके लिए। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
0: कूल सॉन्ग
1: रेडियो ऑलिव पर, आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
0: Cool song.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: Back from vacation in your hometown, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में ग्रोसरीज हो फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल नेस्टो हाइपरमार्केट 152nd ब्रांच नाउ ओपन इन ओल्ड पास

0: Tanisha.
1: Tanisha. मोहब्बतें मूवी से कमाल गाना सुना आपने ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM. तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर और एक इतनी अमेजिंग चीज हुई है सऊदी में. सो देयर इज दिस न्यू लेबर लॉ, ठीक है, और आई थिंक ये सुन के आप सब बहुत खुश होने वाले हैं एंड यू ऑल विल ऑल्सो से कि भाई ये तो हर कंट्री में

0: जाना चाहिए.
1: सो अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ, अगर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं एंड यू हैव गिवन द इंटरव्यू और 30 डेज के अंदर अंदर अगर आपको जवाब नहीं आया, बेसिकली कंपनी ने आपको गोस्ट कर दिया है और एचआर ने कहा वी विल गेट बैक टू यू सून एंड देन दे नेवर गेट बैक टू अस एवर, तो वो एक वायलेशन होगा एंड यू कैन रिपोर्ट देम. यस, सो सऊदी में ये लॉ लाया गया है फॉर यू नो ऑल द पीपल. हम इतनी होप्स के साथ जाते हैं, इट्स ओके, मे बी आई एम नॉट दी यू नो परफेक्ट फिट फॉर योर कंपनी और मे बी आई डू नॉट हैव दी ऑल दी क्वालिफिकेशंस और स्किल्स विच यू आर लुकिंग फॉर, पर इतना तो बनता है कि बता दो कि भाई नहीं रख पा रहे हैं आपको, मैं यहाँ उम्मीद लगा के बैठी रहूँगी. दैट्स नॉट नाइस, राइट? सो आई थिंक ये वाला जो लॉ है नॉट जस्ट इन सऊदी, एवरीवेयर सबको ये इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए सारी कंट्रीज में, बिकॉज यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है उनकी. एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, पर नहीं भी कर रहे हैं तो भी बता तो सकते हो, चला क्या जाता है. आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस पार्ट एंड इट इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस. आई नो आई हैव ऑल्सो बिन देयर, दैट्स व्हाई आई वॉज सो हैप्पी व्हेन आई रेड. आई वॉज लाइक भाई ये तो हर जगह आ जाना चाहिए. और ये लॉ जब हर जगह इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसके बाद एचआर्स ये बोलेंगे जो गाना मैं चलाने वाली हूँ आपके लिए.

0: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: हर सुबह 6 से 10 हर जिस तनीशा को बिंदास मॉर्निंग में
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha. Tanisha. Tanisha. Tanisha.
1: Zain Zohaib aur Kratulan Baloch ki awaaz mein thagya beautiful track only on Radio 1106.3 FM. Tanisha ke saath hai aap. Bindaas mornings chal rahe hain aap.
2: Wacky wisdom.
1: So, आज हम बात करने वाले हैं वैकी विज़डम में बादर माइनहॉफ फिनोमेना की. जी हाँ. सो यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि आपने कोई नई चीज़ खरीदी है एंड देन सडनली आप वो चीज़ हर जगह यू नो सोशल मीडिया पे इन योर सराउंडिंग्स एवरीवेयर यू आर सीइंग दैट और आपने कोई नया वर्ड सीखा है फॉर दैट मैटर और वो वर्ड आपको हर जगह नजर आ रहा है एंड दैट इज़ कॉल्ड बादर माइनहॉफ फिनोमेना. सो येलो टैक्सी वाला जो थियोरी है वो पता है. So if you tell your brain कि आज मुझे yellow taxis जो हैं अगर वो taxis और cars you know whatever yellow color की एक car मुझे notice करनी है roads पे I have to count कितनी है तो आपका brain उस पर focus करने लग जाएगा and you will start seeing more and more of them. जबकि वो usually आपके surrounding में थी अब तक पर आपने कभी notice ही नहीं किया. आपको suddenly लगने लगता है कि भाई ये इतनी सारी yellow car कहाँ से आ गई मेरे आसपास. But it was always there. It's just your brain was not focusing on that because आपने उसे नहीं कहा था कि उस पर focus करना है और वो important है. So that's how Bader-Meinhof effect works and we need to use that, you know, to bring more positivity, to bring more good things in our life. Tell your brain कि भाई सब कुछ बढ़िया हो रहा है, ये अच्छी opportunities मेरी तरफ आ रही हैं, वो उस पर focus करने लग जाएगा and eventually you will get that. You know, another way of manifesting good things in your life or positivity in your life and more better opportunities for future. So, agar aisi cheeze hame pata hai to unka behtar tarike se istemal kar rahe hain hamari life ko aur better banane mein. Sahi hai na? Haan ji. I'm also doing that and I want you to do that too. Sending fresh song of the hour for you, Asim Azhar aur ki awaaz mein. Stay tuned on Jio Bindaas.
0: Radio Olive Par. Song of the Hour. Yeah, Ghana.

0: Kai ke saath CNG ho ya fuel type buses 64 seater ya compact 26 seater paiye behtar mileage aur maximum comfort Carmel Group ke saath ab safar without suffer visit Carmel Group now
1: Back from vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं अब कतर में shopping करें best prices पर सिर्फ Nesto Hypermarket में groceries हो, fresh food हो या daily essentials सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर तो अपनी shopping को बनाए और भी profitable Nesto Hypermarket 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग RJ तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: Gardner movie se You're My Love. This is for the weekend. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha aapke saath Bindaas Morning chal rahe hain par aur waqt ho chuka hai aaj ke word ka.
1: Ye hai chalti phirti dictionary.
0: हाँ जी, और आज का जो वर्ड है इट इज देखो जिधर भी सूट कर रहा है वहां पे अप्लाई कर देना, ठीक है? सो द वर्ड इज ममसिमस, MUMPSIMUS, ममसिमस. यस, जिसका मतलब होता है कि एक इंसान है, ठीक है, उस इंसान ने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, या फिर दे डिड समथिंग रॉन्ग, या फिर कोई ऐसा बिलीफ है जो कि चेंज हो जाना चाहिए. इट विल बी गुड फॉर देयर लाइफ ओनली, एंड यू आर ट्राइंग टू टेल देम कि भाई ये ठीक नहीं है, मत करो ऐसा, ऐसा मत सोचो, इस तरह से मत देखो इन चीज़ों को. और वो स्टिक कर रहे हैं स्टबनली उस पर कि नहीं, मैं बेहतर जानता हूँ, मुझे पता है क्या सही है, तुम्हें नहीं पता. So a person basically who is, you know, stubbornly sticking to an old habit, belief, या फिर कोई mistake उन्होंने कर दिया है पर वो मानने को तैयार नहीं है कि वो गलत है, that person is called mumsimus. I know, बहुत सारे लोगों का ख्याल आपके जहन में आ रहा है, उसे जहन में ही रहने दीजिए. आप गाने सुनिए आने वाले.
2: इब्ने बतूता, ता, ता, बगल में जूता, ता, ता, पहने तो करता है जुर्र.
0: जी, इब्ने बतूता और साथ में आशिता भी है.

0: का
1: भाई वाह। और एक कल्ट क्लासिक गाना तो बनता है जी, वीकेंड पे मैच भी कर रहे हैं। फिर कोई ऐसे प्लान किया आपने? शेयर कीजिए अपनी वीकेंड प्लान्स मुझसे 3311106 पर। और फिलहाल आई एब्सोल्युटली लव दिस ट्रैक, आइए साथ में सुनते हैं और एंजॉय करते हैं द माधव मस्त कलंदर। स्टे ट्यून्ड ऑन जियो विंदास।
2: Everybody's talking about peace in the world, all we get to see is the pain and the hurt. We don't want no war, we don't want no fights, no guns, no bombs, no fists or the knives.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, aapke saath with us morning show. Yahan par Lata Dai ki awaaz mein DDLJ se suna aapne cult classic track from a cult classic movie. Yaar kitni bhi baar dekh lo, kabhi bore nahi hota is movie se. Well, abhi ek important cheez batani hai. If you are a teacher or you know anyone of you was looking for a job in schools, तो सिविल सर्विस एंड गवर्नमेंट डेवलपमेंट ब्यूरो ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन के साथ मिलकर कुछ न्यू वैकेंसीज जो हैं कतर गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए वो अनाउंस करी हैं. जी, ये सारी एप्लीकेशंस कवादर ऐप के थ्रू आप यू नो अप्लाई कर सकते हैं और वहीं से एक्सेप्ट की जाएगी और कहीं से नहीं. सो बहुत सारी टीचिंग वैकेंसीज हैं वहाँ पे, बहुत सारी स्पेशलिस्ट जॉब्स भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और सपोर्ट रोल्स के लिए भी वैकेंसीज हैं. आप चेकआउट कीजिए, जो भी आपके लिए सूटेबल और फिजिबल है आप उस बिंदास अप्लाई करो एंड मेरी तरफ से गुड लक आपके लिए. और बहुत सारी जो वैकेंसीज हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें डिफरेंट डिफरेंट है. किसी में बैचलर्स डिग्री चाहिए, किसी में सेकेंडरी या फिर प्रिपरेटरी लेवल क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं. सो इस हिसाब से देख लीजिएगा एंड यू नो वही ऐप प्लेटफॉर्म से ही आपने अप्लाई करना है, कवादर प्लेटफॉर्म से, वहीं से वैकेंसीज जो एप्लीकेशंस जो हैं वो एक्सेप्ट की जाएगी. गुड लक और जबरदस्त हिट भेज रही हूँ आपके लिए. सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट.

0: Tanisha.
1: Tanisha. KK और वसुंधरा की आवाज में चले जैसे हवाएं फ्रॉम द मूवी. मैं हूं ना ओनली ऑन रेडियो 11.6.3 FM. तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर, और रिमाइंडर देने आई हूँ कि फॉलो कर लो सोशल मीडिया पर. जी हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम पोस्ट करते रहते हैं, आपसे कुछ मिस आउट हो जाएगा, कोई कॉन्टेस्ट हुआ, कोई इवेंट हुआ और आपको नहीं पता चला वक्त रहते, तो मुझे बड़ा दुख होगा यार. And I don't want that. Yes. So जाइए radioolive.qa is the handle. उसे follow कर लीजिए Instagram, Facebook पर. We are on YouTube as well. वहाँ जाकर आप full length interviews देख सकते हैं, जिसके snippets आप Instagram या फिर Facebook या LinkedIn पर देख रहे होते हैं वो आपको पूरा का पूरा YouTube पर मिल जाएगा. Along with that, if you are traveling और ऐसे हो रहा है कि यार ये तो छूट जाएगा, बढ़िया बढ़िया गाने नहीं सुन पाएंगे हम और मुझे नहीं सुन पाओगे, अगर ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आपका entertainment आप अपने साथ लेकर चल सकते हैं. जी हाँ, ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड आर ऐप. रेडियो ऑलिव का ऐप है, आप उसे डाउनलोड कीजिए और दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप वहां जाकर हमें लाइव सुन सकते हैं. यस मेरी जान, एकदम आसान, आपकी सहूलियत के लिए सारी चीजें तैयार करके रखी हैं यहाँ पे. Also to all the people out there, like those who are working, या फिर आप कोई HR हैं, आप boss हैं, अगर आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं तो you know, if your employees are asking for a break, so instead of giving them one, bring the break to them. Yes, we can bring that break for them. Happiness Lounge के through आप हमसे connect कीजिए 3311063 पर, message कीजिए मुझे and we will come to your company, your offices and you know, have an interactive fun gaming session for an hour or so with your employees. और इससे क्या उनका जो morale है, उनकी जो energy है वो refresh हो जाएगी, वो recharge महसूस करेंगे और उनकी productivity बढ़ जाएगी. फायदा किसका हुआ? आपका. तो देर मत लगाइए 3311103.

फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल। नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच, नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस।

Good morning. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Our show का नाम है Life Must है और आज है Thursday. और कतर में Thursday की ना एक अलग personality होती है. सुबह अलार्म बजता है तो body office में होती है, लेकिन दिमाग वो already weekend में check-in कर चुका होता है. आज काम भी करना है, meetings भी हैं, emails भी हैं, लेकिन अंदर से एक आवाज लगातार बोल रही होती है, बस भाई थोड़ा और, वीकेंड बिल्कुल सामने है. और मुझे लगता है कि वीकेंड का सबसे खूबसूरत हिस्सा ना एक्चुअली सैटरडे नहीं होता, वो फीलिंग होती है कि अब अगले कुछ दिन तक किसी चीज के लिए जल्दी नहीं करनी. रात का डिनर थोड़ा सा लेट हो सकता है, कल सुबह अलार्म इग्नोर किया जा सकता है, कॉफी बिल्कुल आराम से पी जा सकती है. और सबसे बड़ी लग्जरी है, कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि जल्दी करो, देर हो रही है. लेकिन एक बात बताइए, हम पूरे हफ्ते वीकेंड का इंतजार करते हैं और फिर वीकेंड आते ही उसे ना भर देते हैं, ब्रंच, शॉपिंग, दोस्त, फैमिली, क्लीनिंग, अपॉइंटमेंट्स, और फिर बैठकर सैटरडे की नाइट को सोचते हैं कि यार कल तो संडे आ गया, वापस से काम पर जाना है. सो वीकेंड खत्म हो उससे पहले आई विल से कि थोड़ा सा उसे रिलैक्स रखिए और आप मुझे बताइए कि आपके आज के क्या प्लान है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर इज 333-111-1063. आज बहुत सारी किताबों की बात करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल, नेस्टो हाइपरमार्केट 152nd ब्रांच नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस अलगराफा।
2: Olive सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: आपने एक मजेदार चीज नोटिस की है, आज सुबह आप वही इंसान थे जो संडे को होते हो, मतलब वही जॉब, ऑफिस, ट्रैफिक, ईमेल्स, लेकिन जैसे जैसे आप ऑफिस की तरफ आए, थर्सडे आ गया, आपकी पर्सनालिटी बदल रही है। आज आप के पास बहुत काम है, बस मीटिंग्स हैं, मेल्स हैं और वीकेंड प्लान्स वो भी हैं। कैलेंडर में सिर्फ एक दिन बदलता है लेकिन मूड पूरा चेंज हो जाता है, और इसमें एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल एंगल भी है। सो हमारे ब्रेन को ना एंटिसिपेशन पसंद है, जब हमें पता होता है कि कोई इंजॉयबल चीज आने वाली है, चाहे वो कोई ट्रिप है, डिनर है, मूवी है, हॉलीडे है, वीकेंड है, तो उसे उस चीज की खुशी ना एक्चुअल इवेंट से पहले ही होने लग जाती है। मतलब टेक्निकली वीकेंड अभी शुरू नहीं हुआ है लेकिन आपका ब्रेन ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुका है। इसीलिए थर्सडे इवनिंग की कॉफी कभी कभी मतलब संडे मॉर्निंग की कॉफी से ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि कॉफी वही है, एक्सपेक्टेशंस अलग है। और शायद यही वजह है कि वेकेशंस में भी प्लानिंग फेज इतना एक्साइटिंग होता है, होटल अभी देखा नहीं है लेकिन मेंटली बालकनी में आप बैठ चुके हो। आपका वीकेंड स्विच किस टाइम पर ऑन होता है, मतलब या वो कोई थर्सडे मॉर्निंग है, या फिर लंच के बाद, या फिर ऑफिस से 6 बजे निकलते ही आपको लगता है कि बस अब मैं आज़ाद हूँ, या फिर सीक्रेटली आप वेंसडे नाइट से ही वीकेंड में होते हो। यू टेल मी, नंबर सेम 3311063। सो माई वीकेंड स्विचेस ऑन एट, बताइए मुझे फटाफट से। मेरा वैसे थर्सडे को ही स्टार्ट होता है, आज सुबह से मेरा मूड बहुत बढ़िया है और मैं हमेशा थर्सडे को ना बहुत ही अच्छे से तैयार होकर ऑफिस आती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है शाम को तो कहीं ना कहीं जाना ही है। सो यू टेल मी योर प्लान्स। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, ये है लाइफ मस्त है। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
3: ओ जाने जा, ये सच है।

0: Ready?
1: Ready!
0: To learn!
1: Yes!
0: To play!
1: Absolutely!
0: To grow!
1: With Maserati!
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
1: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए

द अनडॉक्यूमेंटेड किताब का नाम है और ये किताब आपको ना जाने कितनी सारी चीजें सिखाती है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। आज एक ऐसी किताब की बात करते हैं जिसका सवाल बहुत सिंपल है लेकिन आंसर बहुत सिंपल नहीं है। घर आखिर होता क्या है, मतलब जहां पर आपका जन्म हुआ या फिर जहां पर आपकी फैमिली रहती है या फिर वो पहली जगह जहां पर आपको लगा कि यार मैं तो यहीं से बिलोंग करती हूँ। पर इतनी ब्यूटिफुल किताब है द अनडॉक्यूमेंटेड, जहां पर आपको आइडेंटिटी और बिलोंगिंग्स जैसे सवालों को सामने लेकर आती है। किताब जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री आने वाली फैमिली की जर्नी को एक्सप्लोर करती है और कतर में रहने वाले लोगों के लिए भी सवाल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि कितने सारे लोग हैं जिनका एक शहर में बर्थ हुआ, चाइल्डहुड कहीं और था, जॉब वो लोग कतर में करते हैं। और मैं तो इतने लोगों से मिली हूं जो 20 साल से 15 साल से कतर में रह रहे हैं, मतलब जब वो बहुत यंग थे अपनी फर्स्ट जॉब के लिए कतर आए थे और तब से यहीं पर हैं। एंड आई एम लाइक कि यार कितने साल हो गए कि अब यहां से जाना बहुत डिफिकल्ट होगा। सो कभी कभी घर का एड्रेस नहीं होता, वो एक किचन, वो एक लैंग्वेज, वो एक आवाज, वो एक मतलब जो लाइफस्टाइल आपने स्टार्ट किया है बस वही आपकी लाइफ बन जाता है। सो बिना एक्सप्लेन किए आपको मैं समझ सकती हूँ। एंड आई विल से कि यहाँ पर कभी कभी ना इंसान जगह बदलता है और साथ में अपनी आइडेंटिटी भी थोड़ा थोड़ा रीबिल्ड करता है। सो यू टेल मी कि अगर आपके कोई पुराने दोस्त या आप किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जब जाते हो तो क्या फीलिंग होती है। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल

कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा मुसाफिर।

सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीकेंड, जो ओटीटी के बिना अधूरा लगता है. और इस बार ऑप्शंस की कमी नहीं है. नेटफ्लिक्स पर आज चुंबक रिलीज हो गई है एंड आई एम लाइक कि मुझे ये देखनी है भाई. वो इतनी इंटरेस्टिंग यू नो स्टोरी लग रही है. मतलब कभी कभी ना ऐसा मन करता है कि बिना लॉजिक वाली कॉमेडी देखने का अलग ही मजा है. इसी के साथ ऐसी बहुत सारी मूवी आ रही हैं, चाहे वो क्राइम हो, कॉमेडी हो, हिस्टोरिकल ड्रामा हो, इंटरटेनमेंट हो, हॉरर कॉमेडी हो, सब कुछ है आज. मतलब वो भी एकदम नया. लेकिन असली प्रॉब्लम कॉन्टेंट की कमी है ही नहीं, डिसीजन की कमी है कि आपको क्या देखना है. जैसे मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि आज शाम को मैं चुंबक देखूंगी. सो आपको ट्रेलर देखा आपने, फिर दूसरा ऑप्शन, फिर रेटिंग, फिर रिव्यू, फिर इंस्टाग्राम पर सर्च किया और उसके बाद आपको लगा कि यार इसके रिव्यू इतने बढ़िया नहीं है. पर हो सकता है जिसको नहीं अच्छा लगा उसने रिव्यू दिया हो, आपको हो सकता है वो कॉमेडी पसंद आए. सो आई विल से कि खुद से डिसाइड कीजिए, चूज कीजिए कि आज यू नो कैसा कॉन्टेंट आपको देखना है इस वीकेंड. इसीलिए मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं मांग रही हूँ, बस पूछ रही हूँ कि आपका क्या मूड है, क्या देखने का मूड है. ट्रेलर, कॉमेडी, रोमांस, हिस्ट्री, हॉरर, सब कुछ यू नो इस टाइम पर नया कंटेंट जो है आपको मिल जाएगा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

किताब का नाम सुनते ही लगता है कि ऐसे छुट्टियों में चले गए। नाम है अ माउंटेन, अ लेक एंड अ सॉन्ग। सो जिसका नाम ही थोड़ा सा आपको कहीं दूर लेकर जाता है, एक पहाड़, एक झील और एक गाना। मानव कौल और वैभव शर्मा की ये किताब है जिसका नाम है अ माउंटेन, अ लेक एंड अ सॉन्ग। ट्रैवल को ना सिर्फ प्लेसेस की लिस्ट की तरह नहीं देखती है किताब, इसमें जर्नी को ऑब्जर्वेशन और सेल्फ डिस्कवरी से जोड़ने का एक एंगल है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू, और शो का नाम है लाइफ मस्त है। और मुझे ना ट्रैवल की यही बात सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है। हम ट्रैवल पर जाकर सोचते हैं कि मैं दुनिया देखने जा रही हूँ, लेकिन कई बार वापस आकर पता चलता है कि मैं खुद को थोड़ा सा और समझ कर आई हूँ। अब आप सोचिए, आप कहीं नई जगह पर जाते हो, आपको नए लोग मिलते हैं, नया खाना आप ट्राई करते हो, मतलब वहां पर कोई नंबर्स, कोई एज कुछ मैटर नहीं करता, आप बस लोगों से ना सेल्फलेस, यू नो, अनकंडीशनली बातें करते हो। और शायद इसी वजह से सोलो ट्रैवल कुछ लोगों के लिए इतना ट्रांसफॉर्मेटिव होता है कि आपको पता चलता है कि एक्चुअली आपको लाइफ में किस चीज की जरूरत है। कोई लग्जरी, कोई साइलेंस, कोई एडवेंचर, या फिर कोई लोग, बस एक ऐसी जगह जहां पर फोन में नेटवर्क थोड़ा सा कम हो। सो आज ट्रैवल लवर्स से मेरा सवाल है कि आपकी जिंदगी में कौन सी ऐसी जर्नी जो आपको डेस्टिनेशन से ज्यादा अपने बारे में कुछ सिखा कर आई है, चाहे वो कोई कंट्री है, कोई शहर है, कोई स्टेकेशन है। यू जस्ट टेल मी। नंबर सेम 3311063, एंड यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव। स्टे ट्यून्ड, चियो बिंदास।

0: आज ना कतर में एक बहुत ही खूबसूरत कल्चरल इवेंट चल रहा है, सोहेल इंटरनेशनल हंटिंग एंड फाल्कनरी एग्जीबिशन, जो कि कटारा में हो रहा है 12th ऑफ सितंबर तक। सो यू हैव होल वीकेंड की आप कभी भी प्लान कर सकते हो। अब आप कहोगे कि फाल्कनरी ये तो पुरानी चीज है। एग्जैक्टली, लेकिन सवाल यही है कि कुछ ट्रेडिशंस मॉडर्न दुनिया में भी सर्वाइव कैसे करते हैं। आज हमारे पास GPS है, ड्रोन्स है, AI है, स्मार्टफोन्स है, लेकिन फाल्कनरी जैसी ट्रेडिशन अभी भी कतर की कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा है। क्योंकि ट्रेडिशन ना सिर्फ पुराने तरीके से रिपीट करना नहीं होता, ट्रेडिशन कई बार सोसाइटी की मेमोरी होती है। वो कहती है कि हम यहाँ से आए हैं, और मॉडर्निटी का मतलब ये नहीं है कि पुरानी चीज़ों को छोड़ दिया जाए या भूल जाया जाए। असली बैलेंस यही है कि टेक्नोलॉजी फ्यूचर बताए और ट्रेडिशन आपको पास्ट याद दिलाए। और ये सिर्फ कतर की बात नहीं है, आपके अपने घर में भी कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी, शायद कोई पुरानी रेसिपी, कोई फेस्टिव रिचुअल, कोई ट्रेडिशन जो फिर जनरेशन से जनरेशन चला आ रहा है। सो आपके घर या होम टाउन की कौन सी ऐसी ट्रेडिशन है जो आज भी आपको लगता है कि यार ये छोटा सा काम है, जरूर करना चाहिए, इससे दिल को खुशी मिलती है। सो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM। बाय द वे, आपको वीकेंड के लिए आइडियाज दे रही हूँ। यू टेल मी आपके वीकेंड के क्या प्लान है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल एव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑल एव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

आज थर्सडे है, एवरीबॉडी इज सो हैप्पी, सबका मूड ना एकदम बढ़िया हुआ हुआ है, सो एक छोटा सा साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोचिए अब कल फ्राइडे है, सो बस ये सोचकर ही मूड ना थोड़ा सा बेटर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान सिर्फ एक्सपीरियंस एंजॉय नहीं करता, उनकी एंटिसिपेशन भी इंजॉय करता है। आप हॉलीडे पर जाने वाले हो और एक्साइटेड हो, रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन किया है, खाना खाने से पहले ही एक्साइटमेंट है, कॉन्सर्ट की कोई टिकट खरीदी और कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले ही बहुत एक्साइटमेंट है, और वीकेंड थर्सडे को ही ब्रेन बोल देता है कि अब लाइफ ना थोड़ी अपनी सी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंटिसिपेशन हमें प्लानिंग भी करती है, मतलब सोचते हैं कल कहाँ जाना है, क्या खाना है, किससे मिलना है, क्या देखना है, और यानी एक्सपीरियंस शुरू होने से पहले ही ना उसका एक छोटा सा वर्जन ना हमारे दिमाग में ऑलरेडी चल चुका होता है। लेकिन इसमें एक ट्रैप भी है, कभी कभी ना हम वीकेंड से इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि वीकेंड आते प्रेशर बढ़ जाता है कि वीकेंड प्रोडक्टिव होना चाहिए, बाहर जाना है, क्लीन करना है, मूवी देखनी है, फ्रेंड से मिलना है। अरे भाई वीकेंड है, कोई ओलंपिक्स नहीं है। सो आज एक काम कीजिए, अपने वीकेंड में एक चीज ऐसी रखिए जो अचीव नहीं करनी, बस इंजॉय करनी है। सो नंबर सेम 3311063, मुस्कान है आपके साथ, सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM और ये है लाइफ मस्त है।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पास

0: एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: अरमान मलिक
0: 106.3 FM रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: यार फैशन लवर्स के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इस सीजन ऑफ फैशन का इंटरेस्टिंग हिस्सा ना सिर्फ कपड़े नहीं है, कपड़ों के साथ साथ वो एक्सेसरीज हैं जो आपके कपड़ों को और भी ज्यादा इन्हांस करते हैं, जैसे कि ब्रॉचेस, सिल्क स्कार्फ्स, स्टेटमेंट हैट्स, या फिर सनग्लासेस, या फिर कोई नेकलेस, पर्ल, या फिर ओपरा लेंथ ग्लव्स, जैसी पूरी चीजें ना स्पॉटलाइट में। अब वो की करंट ट्रेंड रिपोर्ट भी इंडिविजुअलिटी और स्टेटमेंट के बारे में बात कर रही है, और मुझे ये ट्रेंड ना इसीलिए इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि एक छोटी सी चीज आपके पूरे आउटफिट को बदल सकती है। सिंपल सा ब्लैक ड्रेस है और उसमें आपने एक पर्ल नेकलेस डाल लिया, पूरी वाइब ही चेंज हो गई। स्कार्फ ले लिया तो पूरी पर्सनालिटी चेंज हो गई। कोई बढ़िया सा ब्रोच है जो बहुत ही विंटेज है, जो आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है, सब चेंज कर देता है। बोल्ड से सनग्लासेस, अब आप एयरपोर्ट से निकले हैं या फैशन वीक से, कोई नहीं जानता। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे अच्छी बात एक्चुअली, कि आपको पूरा वार्डरोब बदलने की जरूरत नहीं है। एक इंटरेस्टिंग चीज खरीदी और पुराने आउटफिट को नया बना दिया। इसलिए शायद फैशन में अब एक अच्छा सवाल यह भी है कि मेरे पास नया क्या है, बल्कि सवाल यह है कि मेरे पास जो है उसे मैं नए तरीके से कैसे पहन सकती हूँ। तो फैशन लवर्स के लिए आपका सिग्नेचर एक्सेसरीज क्या है बताइए मुझे। कोई इयररिंग्स, वॉचेस, स्कार्फ्स, बैग, सनग्लासेस या फिर परफ्यूम, आपको लगता है कि परफ्यूम ही सारा काम कर देता है, सो यू हैव गुड कलेक्शन ऑफ परफ्यूम। बाय द वे, यहाँ कतर में स्पेशली इतने अच्छे कलेक्शन होते हैं लोगों के पास परफ्यूम के, एंड आई एम लाइक यार ये लोग कैसे इतने सुंदर, मतलब कैसे इतने अच्छे परफ्यूम जो है वो खरीद लेते हैं विदाउट एनी एफर्ट्स। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, नंबर सेम 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो, बिंदास
1: रेडियो।

0: Wow. You are listening to Radio Olive 106.3 FM. गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ
1: हेलो लिसनर्स मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास
0: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पास

0: यार अब एक छोटा सा माइंड बेंडिंग सवाल आपसे पूछते हो। आप इंस्टाग्राम खोलते हो, आपकी पसंद की रील्स आती हैं। आप यूट्यूब खोलते हो, आपकी पसंद के वीडियोस आते हैं। आप कोई दूसरा एप्लीकेशन खोलते हो, आपकी पसंद की यू नो शॉपिंग की ऐप्स आने लग जाती हैं, कपड़े आने लग जाते हैं। इसी के साथ हम खुश होकर बोलते हैं यार ये ऐप्स मुझे कितना जानते हैं। लेकिन कभी सोचा है क्या वो आपको जानते हैं या उन्होंने आपको इतना ऑब्जर्व कर लिया है कि अब आपकी अगली पसंद का अंदाज़ा उन्हें लग चुका है। एल्गोरिथम्स ना हमारे बिहेवियर से सीखते हैं। आप किस चीज़ पर रुकते हो, क्या स्किप करते हो, क्या लाइक करते हो, क्या दोबारा देखते हो, और फिर वो उसी तरह का कंटेंट आपको ज़्यादा दिखाता है। इसका फ़ायदा ऑब्वियस है कि आपको वही चीज़ जल्दी मिल जाती है जो आपको पसंद है। लेकिन इसका एक इंटरेस्टिंग साइड इफेक्ट भी है। धीरे धीरे आपका डिजिटल वर्ल्ड ना बहुत छोटा हो जाता है। ये मेरे साथ हो चुका है। मतलब मेरे इंस्टाग्राम पर बस यही होता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ फैशन से रिलेटेड चीज़ें दिखाई देती हैं। पूरी दुनिया ना बस आपको लगता है यही देख रही है, और मेरे साथ भी ऐसा ही है। इसीलिए कभी कभी एल्गोरिदम को सरप्राइज करना भी मजेदार है। कोई अगला चीज अगर आपको दिखे ना, तो ऐसी चीज देखिए जिससे आपका एल्गोरिदम चेंज हो सके। कोई कॉमेडी वीडियोस, कोई यू नो डिफरेंट चीजें, कोई ऐसी फिल्म देखिए जो नॉर्मली आप नहीं देखते। ऐसे क्रिएटर सुनिए जो आप एग्री ही नहीं करते, क्योंकि डिस्कवरी तभी होती है जब हमें पहले से पता नहीं होता कि हमें क्या पसंद आएगा। सो आई विल से कि चाहे वो म्यूजिक है, फूड है, ट्रैवल है, फैशन है, कोई भी चीज है, उसमें आप ना थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहिए। सुन रहे हैं आप रेडियो 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है। कूल सॉन्ग।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग लवर्स इन कतर, आर यू रेडी? इस वीकेंड तैयार हो जाओ नेस्टो के क्रेजी फिगर्स ऑफर के लिए। शॉप एट नेस्टो नाउ फॉर जस्ट 5, 10 एंड 15 कतरी रियाल्स। अ ह्यूज स्पेस फिल्ड विद वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मोस्ट आइटम्स आर अवेलेबल फॉर 5, 10 एंड 15 रियाल्स। इस प्रमोशन का फायदा आप सिर्फ 10 सितंबर से 13 सितंबर तक ही उठा सकते हैं। वीकेंड शॉपिंग यानी नेस्टो पर शॉपिंग।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबेर, रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर, जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

आप सभी का स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वैग के साथ स्वागत है। यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो चलिए एक साथ बैठकर गुफ्तगू करते हैं, गाने सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, ढेर सारे किस्से खबरें कहानियां शेयर करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताते हैं। तो आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए, 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए मुझे क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: हेलो नमस्कार, मम्मा मिया, मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ओलिव

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक बहुत ही प्यारी चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक छोटी सी कहानी है। जब मैं 10th क्लास में था तो उस टाइम पे मेरे टाइम में ना बोर्ड एग्जाम नहीं था, CCE करके एक सिस्टम था, विच इज कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो डिसकंटिन्यू कर दिया है। और उस टाइम पे क्या होता था, 9th और 10th दोनों क्लासेस के मार्क्स जो है मिला के 10th में तुम्हें CGPA मिलता था, और सेमेस्टर काइंड ऑफ तरीके से जो है पढ़ाई हो चुकी थी। बोर्ड के जैसे पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना होता था हमें, ठीक है, वो 3 महीने के जो सिलेबस होते थे उतने चैप्टर्स ही पढ़ने होते थे, तो बहुत ईजी था। बट कंसिस्टेंसी जो है मेंटेन करनी पड़ती थी, क्योंकि 9th में तुम्हें क्लास वर्क कंप्लीट करना है, होमवर्क कंप्लीट करना है, ये सारी चीज़ें करनी। तो 9th क्लास से लेके जो है हम काफ़ी अच्छे स्टूडेंट बनने की कोशिश में थे। अब 10th के एग्जाम के एंड में क्या हुआ, उस टाइम पे मेरे पापा हॉस्पिटलाइज हो गए, और पढ़ाई की मैंने एग्जाम दिया अच्छे से, 8.8 CGPA भी आया मेरा, काफ़ी डिसेंट। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत बढ़िया है, अच्छा है, मतलब डिसेंट स्टूडेंट का एक वो है। तो मुझे उस टाइम ना एक वॉकमैन चाहिए था, क्योंकि गाने सुनना तब से बहुत पसंद है, और कुछ गाने जो है मैंने निकाल के रखे थे ताकि मैं अपना प्लेलिस्ट बना पाऊँ करके। और मैं मम्मी से बोलता था कि यार मुझे वॉकमैन चाहिए। तो मम्मी ने बहुत ही डिफिकल्ट टारगेट दिया था मुझे कि 9 पॉइंट के ऊपर आएगा तो मैं तुझे दिलाऊंगी करके। तो मेरे 8.8 आए, और जब मेरे कंडीशंस ही पूरे नहीं हुए तो मैंने मांगा भी नहीं मम्मी से। मगर एक दिन मम्मी मुझे बाहर लेके गई और मुझे एक छोटा सा वॉकमैन दिलाया। तो मैंने पूछा, आपने तो बोला था 9 के ऊपर मिलेंगे तो ही दिलाऊंगी करके। तो मम्मी ने बोला, ये मैंने इसलिए दिलाया तुझे क्योंकि ना मैं घर में थी ना पापा घर में थे, हम दोनों के यहाँ पे ना होने के बावजूद भी तूने पढ़ाई की। तू चाहता तो ऐसे ही छोड़ सकता था, कुछ भी लिख कर आ सकता था, बैठ के टाइम वेस्ट कर सकता था, बट तूने पढ़ाई की, फिर उस एफर्ट के लिए जो है मैं ये रिवॉर्ड दे रही हूँ करके। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कभी कभी यार जैसे हम चाहते हैं शायद रिजल्ट्स वैसे ना आए, मगर कहीं ना कहीं से कुछ रिवॉर्ड जो है हमारे एफर्ट के मिल ही जाते हैं। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक लड़की की कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। तो अमेरिका में एक लड़की है, ठीक है, उसके घर वालों ने उसे कॉलेज में जाते वक्त जो है, जैसे उसका कॉलेज में एडमिशन हुआ, उसको एक होंडा सिविक दिलाई, ठीक है, एक यूज्ड होंडा सिविक दिलाई। तो लड़की गुस्सा हो गई, बोली कि क्यों, आप लोग तो बीएमडब्ल्यू चलाते हो, आप ऑडी चलाते हो, मर्सिडीज चलाते हो, मुझे क्यों ये दिलाया, होंडा सिविक क्यों दिलाया, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो या तो आप बीएमडब्ल्यू दिलाओ, या ऐसे करके नखरे करने लग गई। तो लड़की की मम्मी ने बोला कि मैंने खुद अपनी मेहनत से जो है ये बीएमडब्ल्यू खरीदा है, तेरी तरह बिना कुछ किए मुझे ऐसे मिला नहीं है, ठीक है, और अगर तुझे ये नहीं चाहिए तो मैं ये बेच देती हूँ और उसके पैसे किसी और काम के लिए यूज़ कर लूँगी करके। लड़की ने बोला इससे बेहतर तो आप बेचिए उसे करके। और ये कहानी जब मैंने सुना तो मैं सोचा कि यार ऐसे लोगों को क्यों होंडा सिविक दिया, मुझे चाहिए था होंडा सिविक, मेरे घर वालों ने एक बार भी नहीं पूछा मुझे कि तुझे होंडा सिविक

0: वेलकम बैक, यूर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव। और एक बार हुआ ये कि मैं ऐसे ही गया था बाहर, ठीक है, ऐसे घूम रहा था, टहल रहा था, विंडो शॉपिंग कर रहा था, तो मैंने एक घड़ी देखी और घड़ी मुझे बहुत पसंद आई, मतलब काफ़ी कूल घड़ी। और जितने हाथ में मैंने पैसे रखे थे उसके हिसाब से देखे तो ऑलमोस्ट वो घड़ी जो है कवर कर रहा था। और वो घड़ी एक्चुअली एक वांट कह सकते हैं, नीड नहीं था, मुझे ज़रूरत नहीं थी उस घड़ी की, मगर घड़ी देख के मुझे काफ़ी कूल लगा, मुझे लगा कि मेरे हाथ में काफ़ी कूल लगेगा। और जैसे ही मैं ये कॉन्टेम्पलेट कर रहा था, मुझे याद आया जाकिर भाई ने एक बार बोली थी कि देखो, कल का ताजमहल किसे नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं, आज का झुमरी तले ये बताओ कहाँ पे है, बाकी महीना दाल चावल खा के निकाल लेंगे, मगर अभी कूल लगना है। तो मैंने घड़ी खरीद ली। अब बात ये है कि मैंने वो घड़ी गिन के 4 या 5 बार पहनी होगी, अभी भी मेरे कलेक्शन में रखा है वो, मैं बहुत कम पहनता हूँ उसे, और मगर फिर भी अच्छा लगा मुझे। मगर ये एक इम्पल्सिव बाय था, इसकी ज़रूरत नहीं थी, मगर मन किया ले लिया। आपने भी कभी ऐसा कुछ इम्पल्सिव तरीके से खरीदा है तो बताइए मुझे 3311106 पर। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर ये गाना।

शॉपिंग लवर्स इन कतर आर यू रेडी इस वीकेंड तैयार हो जाओ नेस्टो के क्रेजी फिगर्स ऑफर के लिए शॉप एट नेस्टो नाउ फॉर जस्ट 5 10 एंड 15 कतरी रियाल्स अ ह्यूज स्पेस फिल्ड विद वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मोस्ट आइटम्स आर अवेलेबल फॉर 5 10 एंड 15 रियाल्स इस प्रमोशन का फायदा आप सिर्फ 10 सितंबर से 13 सितंबर तक ही उठा सकते हैं वीकेंड शॉपिंग यानी नेस्टो पर शॉपिंग

0: दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुदेव रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कुछ देर पहले हमने बात की थी इंपल्सिव परचेसेस के बारे में, मुझे मैसेजेस भी आए हैं, कुछ लोगों ने अपने इंपल्सिव परचेस की कहानियां जो है वो भी बताई है। और यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक टिप मैं बताना चाहूंगा। देखिए कई दफा ऐसा होता है कि जब भी हम बाहर जाते हैं, हम मॉल में जाते हैं, फिर कहीं पे भी जाते हैं, तो अगर ऑफर हम देख लेते हैं तो हमारा मन करता है कि चलो यार ऑफर में मिल रहा है ले लेते हैं करके। मगर कोई भी चीज ऑफर में देखकर आपको लेने का मन कर रहा है तो मैं बोलूंगा कि भाई 24 घंटे का टाइम दो अपने आपको, गिव योरसेल्फ 24 आवर्स। 24 घंटे के बाद भी आपको वो लेने का एक मन कर रहा है, तलब मची हुई है, तो आप ले सकते हैं, नहीं तो फिर वो एक अनवांटेड परचेज बन जाएगा। और यही बात याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक बहुत ही बढ़िया चीज हम आपको याद दिलाना चाहेंगे। देखिए, फन करने के बहुत तरीके होते हैं लाइफ में, और ऑफिस में अगर फन करना चाहते हैं आप तो एक तरीका है, वो है रेडियो ऑलिव की टीम को अपने ऑफिस में इन्वाइट करके। मैं बात कर रहा हूँ हैप्पीनेस लॉन्च की, जहां पे आपके पास मौका है रेडियो ऑलिव की टीम के साथ एक दिन आपके ऑफिस में चिल करने का, एंजॉय करने का, फन करने का, रिचार्ज होने का और री एनर्जाइज होने का। इसका हिस्सा बनने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 3311063 पर, हमें मैसेज कीजिए HL स्पेस आपकी कंपनी का नाम। हमारी टीम में से एक मेंबर जो है आपके साथ कांटेक्ट करेगा, बात करेगा, डिटेल्स जो है शेयर करेगा। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे चर्चा हो रही है आईफोन के बारे में, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बढ़िया मॉडल्स जो है लॉन्च हुए हैं। आईफोन फोल्ड, जिसको डुओ बोलते हैं, आईफोन डुओ बोलते हैं, उसके साथ साथ आईफोन 18 प्रो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात चल रही है। और आईफोन फोल्ड के बारे में, आईफोन डुओ के बारे में मैंने देखा बहुत सारे लोग अपने ओपिनियंस बता रहे थे। काफ़ी कूल फोन है वैसे, मगर टेक्नोलॉजिकली देखा जाए तो बहुत लेट आया है इस सेगमेंट में आईफोन। उसने बहुत अपने आप को जो है पीछे कर दिया है अपने कॉम्पिटिटर्स से, क्योंकि सैमसंग तो बहुत टाइम से जो है इस फील्ड में है। मोटरोला है, उसके साथ साथ और भी डिफरेंट कंपनीज हैं जो ऑलरेडी फोल्ड फोन की ओर जो है अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश कर चुके हैं। आईफोन उनको हटा पाएगा, एक फ्रंट रनर बन पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। और $2000 जो है इसका प्राइस बताया गया है, यानी कि महंगाई है। मगर आईफोन 18 प्रो के बारे में भी बात करेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और थोड़ी देर पहले हमने आईफोन डुओ के बारे में बात की, अब बात करते हैं आईफोन 18 प्रो के प्राइस के बारे में, जो सुना मैंने कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 2,45,000 के आसपास आएगा। और मैं यही सोच रहा हूँ कि भाई इससे अच्छा एक नई बाइक ले लेता हूँ मैं, या फिर एक सेकेंड हैंड कार ले लेता हूँ। अब 2,45,000 में आईफोन लेके उसमें बैठ के यहाँ से वहाँ तो जा नहीं सकते ना, तो ये मुझे काफ़ी वियर्ड लगा है। और एप्पल की सबसे खराब बात मुझे ये लगती है कि जब वो नया मॉडल लॉन्च करते हैं तो पुराने को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, और लोग बेचारे पुराने खरीद भी नहीं पाते, सोचते हैं यार 18 प्रो निकल रहा तो 17 प्रो ले लूँगा, थोड़ा दाम कम हो जाएगा करके। वैसे मास्टर स्ट्रोक तो काफ़ी बढ़िया है एप्पल का, मगर ये स्ट्रोक ज़्यादा करते रहोगे तो धीरे धीरे अपने जो बेस है तुम्हारा कस्टमर्स का वो ख़त्म होता जाएगा। और वैसे भी अगर हम सालों साल तक के आईफोन सेल्स की बात करें तो एक डिप जो है दिखाई दे रहा है। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
1: Where's the man?

0: system that it's love for money.
1: Safe number one log. Sunte hain number one radio station. Radio Olive. 106.3 FM.
2: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
3: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
2: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
3: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिले।
2: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
4: ऑलिव लगा और हो जा रिचार्ज।
1: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो सीधा जाइए इंस्टाग्राम पर radioolive.qa सर्च कीजिए और फॉलो कीजिए। और आप फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी तो फिर हमारे कंटेंट को चेकआउट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमें सुनते हुए आप स्टोरी बना के इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं, हमें टैग कीजिए, हम उस स्टोरी को रीशेयर करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके पास मौका है बहुत ही बढ़िया बढ़िया गिफ्ट और प्राइजेस जीतने का, क्योंकि काफ़ी बढ़िया डिजिटल कॉन्टेस्ट जो है हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी आते हैं। और यही बात याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ। ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा।

0: दुनिया के लिए लिखते, ना मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते।
1: तो भाई धीरे धीरे टाटा बाय गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि 5 बजने वाले हैं, पार्टी अभी बाकी है, जबरदस्त इवनिंग शुरू होने वाला है, मेरा वक्त खत्म होने वाला है। मगर कोई गल नहीं जी, जाने से पहले आपको यही याद दिलाएंगे कि आप अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: लवर्स इन कतर आर यू रेडी इस वीकेंड तैयार हो जाओ नेस्टो के क्रेजी फिगर्स ऑफर के लिए शॉप एट नेस्टो नाउ फॉर जस्ट 5, 10 एंड 15 कतरी रियाल्स अ ह्यूज स्पेस फिल्ड विद वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मोस्ट आइटम्स आर अवेलेबल फॉर 5, 10 एंड 15 रियाल्स इस प्रमोशन का फायदा आप सिर्फ 10 सितंबर से 13 सितंबर तक ही उठा सकते हैं वीकेंड शॉपिंग यानी नेस्टो पर शॉपिंग

जब ये गाना आया था ना बॉलीवुड में, तब मैं इससे बहुत रिलेट करती थी कि बापू बहुत ज्यादा हानिकारक है, बिकॉज तब मैं स्कूल में थी एंड मेरे जो डैड है वो मुझसे बहुत सारा काम कराते थे कि होमवर्क करो और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करो. तब मुझे लगता था कि यार डैड आप कितने रूड हो रहे हो. लेकिन फिर मैंने जो है कॉर्पोरेट में एंट्री मारी और मैंने अपने मैनेजर से मुलाकात की, तब मुझे समझ आया बापू हानिकारक नहीं है, बॉस हानिकारक होता है. देखो मैं अभी वाले बॉस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ ऐसा, ठीक है? तो कोई जाकर मेरे बॉस को नहीं बताएगा कि मैंने ये जोक मारा है. जोक को जोक की तरह लो. ओके, वेलकम जी 106.3 रेडियो ओलिव पर. मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है. तो देखो यार, आज वीकेंड की शुरुआत हो रही है, इसीलिए एक अलग टाइप की झील, एक अलग टाइप की एनर्जी अपने अंदर लेकर आई हूं, क्योंकि आज मैं इस एटीट्यूड के साथ आई थी सुबह कि आज तो सारा काम कर दूंगी, जो काम मेरा है भी नहीं मैं वो भी कर दूंगी और देखना मैं बिल्कुल टाइम से ऑफिस से चली जाऊंगी. लेकिन जिस हिसाब से काम आया है ना सेकंड हाफ में, मुझे लग रहा है कि मैं नहीं जा पाऊंगी, बल्कि कल घर पे बैठ के भी काम करना पड़ेगा. वैसे कोई बात नहीं गाइस, सबसे बेस्ट पार्ट तो ये होता है मेरे दिन का कि मुझे आपसे बातचीत करने का मौका मिलता है. सो जल्दी से 3311063 पर मुझे जो है हाय हेलो गुड इवनिंग लिख दो, ताकि मुझ में जो है एक यू नो मोटिवेशन की लहर जो है वो दौड़ जाए एंड मैं आपके साथ वीकेंड की ये जो शाम है ये इन्जॉय कर सकूं. फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना कॉकटेल टू मूवीज है आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर. वॉल्यूम बढ़ाकर ही गाना इन्जॉय करो. बहुत सारी गॉसिप्स, बहुत सारी बातचीत जो है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ. सो स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: Time check. Brought to you by Dalat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 5:14 दैट इज 5:14 स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास
2: एनकाई के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ
3: हाय गाइस दिस इज बारफती खुराना और आप मुझे सुन रहे हो रेडियो ओलिवर
4: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
5: Zabardast evening. Make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: किसी के भी नाम की आप चुनरिया ओढ़ लीजिए, लेकिन आपको धूप से तो देखो सनस्क्रीन ही बचाएगी, वो भी SPF 50 से ज्यादा वाली, तो वो ज्यादा बेहतर होगा कि कर लीजिए। फिलहाल प्यार किया तो डरना क्या से ये अमेजिंग वाला ट्रैक आपने इंजॉय किया 106.3 रेडियो पर। कुछ भी कहो यार, काजोल भले ही शाहरुख के साथ बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सलमान भाई के साथ इस मूवी में तो और ज्यादा कमाल लगी है। मैं हूँ आपकी गजल चंचू, आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठाई है। आज के मौसम की बात कर लेते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस इस वक्त का टेम्परेचर हो रहा है दोहा में, 45 डिग्री सेल्सियस आज का हाइएस्ट टेम्परेचर था, 35 डिग्री सेल्सियस जो है आज का लोएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है, एंड थोड़ी सी देर में जो है मतलब बस 15 मिनट में सनसेट होने वाला है। तो आई एम श्योर आप लोगों को इस वक्त बहुत खूबसूरत आसमान का कलर दिख रहा होगा। सो आपको तो पता ही है कि क्या करना है, बिना खिड़की वाले मेरे इस स्टूडियो से मुझे जो है बाहर का नज़ारा देखने का मन हो रहा है, बस फोटो खींच के भेज दीजिए 3311063 पर कि आखिर इस वक्त आसमान जो है वो ओम्ब्रे दिख रहा है, ऑरेंज दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, आखिर दिख कैसे रहा है। जल्दी से प्लीज़ फोटो भेज दीजिए, वीकेंड जो है वो मेरा बन जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे सुकून मिल जाएगा, क्योंकि मैं जब आती हूँ तो एकदम कड़ी धूप हो रही होती है बाहर, और मैं जब बाहर जाती हूँ है ना ऑफिस से जब मैं निकलती हूँ तो रात हो चुकी होती है। सो मैं जो है शाम देख ही नहीं पाती हूँ, सिर्फ आप ही हो जो मुझे शाम दिखा सकते हो। सो 3311063 पर जल्दी जल्दी फोटोज भेज दीजिए, और उसके बदले में आपको एक जबरदस्त हिट वाला गाना जो है वो मैं सुनाने वाली हूँ। सो वॉल्यूम बढ़ाकर ही गाना इंजॉय कीजिए और जल्दी से फोटो भेज दीजिए यार, इंतजार कर रही हूँ मैं। मैं हूँ आपकी कशिश, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है,
2: अभी बजाएगा ना भिड़ो।
3: हेलो

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें।
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: शॉपिंग लवर्स इन कतर, आर यू रेडी? इस वीकेंड तैयार हो जाओ नेस्टो के क्रेजी फिगर्स ऑफर के लिए। शॉप एट नेस्टो नाउ फॉर जस्ट 5, 10 एंड 15 कतरी रियाल्स। अ ह्यूज स्पेस फिल्ड विद वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मोस्ट आइटम्स आर अवेलेबल फॉर 5, 10 एंड 15 रियाल्स। इस प्रमोशन का फायदा आप सिर्फ 10 सितंबर से 13 सितंबर तक ही उठा सकते हैं। वीकेंड शॉपिंग यानी नेस्टो पर शॉपिंग।
4: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

और नहीं तो क्या, हम और तुम, बस यही दो चीजें तो हैं। वेलकम जी 106.3 रेडियो ओलिव पर, मैं हूँ आपकी कंस्ट्रक्शन शो आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखिए यार, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये बोला था कि यार मुझे ना इस बिना खिड़की वाले स्टूडियो में मन नहीं लग पा रहा है मेरा, तो प्लीज़ मुझे बाहर की ज़रा तस्वीरें भेज दीजिए कि इस वक्त आप अपनी आंखों से कैसा मंजर जो है वो देख रहे हैं। एंड लोग इतने प्यारे हैं, आप सब इतने प्यारे हैं कि सबने मुझे बहुत प्यारी प्यारी फोटोज भेजी है। तो आइए एक साथ देखते हैं कि किस किस ने कैसी कैसी फोटोज भेजी हैं हमें। सो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, अरे वाह, मतलब मैं जो है सिर्फ एक पलक झपकाती हूँ और बहुत सारे फोटोज आ जाते हैं। मोहम्मद ताहिर जी ने जो है एक बहुत ही अमेजिंग फोटो भेजी है, थैंक यू सो मच ताहिर जी। इनोसेंट नाम रखा है हमारे नेक्स्ट सर ने, एंड उन्होंने सलाम कहा है, थैंक यू सो मच, आप अपना नाम प्लीज़ बता दीजिएगा सर। एंड मतीन जी ने भी बहुत प्यारी फोटो भेजी है, ओ माय गॉड। अदील जी ने भी हेलो लिखा है एंड एक बहुत खूबसूरत सी फोटो भेजी है। उमेर अली जी ने भी हमें फोटो भेजी है। ओहो आप लोग यार देखो अलग टाइप के एस्थेटिक लोग हो, मतलब गाड़ी का शीशा दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद ज़रा देख लेते हैं, सैयद खादिम जी ने जो है हमें एक फ़ोटो भेजी है एंड

इनका नाम, सर आपका नाम मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा है, मैंने बहुत कोशिश की. सो मोहम्मद यूसुफ खान जी ने भी हमें बहुत सारी गुड इवनिंग कहा है, थैंक यू सो मच. और गद्दाम लिंगा रेड्डी जी ने भी हमें एक बहुत ही प्यारी सी फोटो भेजी है. एंड मुझे पता है सर ये कदर तो नहीं है, लेकिन आपने अपने फ्रेंड्स के साथ एक बहुत ही प्यारी फोटो भेजी है, थैंक यू सो मच. रेवा जी ने भी बहुत प्यारी फोटो भेजी है. एंड इनोसेंट जी, जिनका नाम हमें नहीं मिल रहा था, उन्होंने भी शफकत अपना नाम हमें लिख के बता दिया है. अभिषेक जी ने भी अभी हमें हाय भेजा है. सो हाय अभिषेक, एंड थैंक यू सो मच इतनी प्यारी इतनी क्यूट सी फोटो के लिए. बाकी आप सब जो है ऐसे ही हमें फोटोज भेजते रहिए, अमेजिंग अमेजिंग. एंड एक बात मैं आपसे जो है पर्सनली कहना चाहती हूँ, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहती हूँ कि जब भी आप फोटो भेजते हैं तो उसके साथ अपना नाम मुझे भेज दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने व्हाट्सएप पे अलग अलग नाम लिखे हुए हैं जो है हमें समझ नहीं आ पाते हैं, तो ताकि मैं आप लोगों का असल नाम जो है वो बता सकूँ सबको. इसलिए प्लीज पूरे पूरे नाम भेजिए. एंड फिलहाल आप सबके एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, सो वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ, और कहते रहो जियो बिंदास.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: Ready?
2: Ready!
1: To learn!
2: Yes!
1: To play!
2: Absolutely!
1: To grow!
2: With Maserati!
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
2: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
4: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ऑलिव पर जियो बिंदास
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
7: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

ये गाना इतना ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि यार क्या फ्यूजन मिक्स बनाया है यार, मतलब थोड़ा सा इंडियन सा टच है, थोड़ा सा वेस्टर्न टच है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कसुशन शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखो यार, हम बातचीत ये कर रहे थे कि क्या क्या करा जा सकता है वीकेंड पर। सो वीकेंड पे करने के लिए यूँ तो बहुत सारे काम है, लेकिन आपको तो बाहर जाना होगा है ना। सो बाहर जा रहे हो एंड अभी पता नहीं है कि कहाँ जाए, तो कटारा हंटिंग एंड फैलकॉन एग्जिबिशन जो है उसमें आप जा सकते हैं, कटारा कल्चरल विलेज में। हमारी टीम भी वहाँ पे गई हुई थी एंड सच में बहुत ज़्यादा फन है। एंड उसके बाद अगर आपको स्पोर्ट्स में जो है वो इंटरेस्ट है, तो FISU की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप भी हो रही है एजुकेशन सिटी में सितंबर 12th तक, सो वहाँ पर भी आप जा सकते हो। एंड उसके साथ उज्बेकिस्तान हेरिटेज इन मोशन भी चल रहा है नवंबर 29th तक, तो वो भी आप इंजॉय कर सकते हो। बाकी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो है वो होती रहती हैं, तो देखो कमी बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। लेकिन मैं तो आपको यही बोलूँगी कि अभी पहली फुर्सत में जो है जैसे ही घर पहुंचो वैसे ही काम जो है ख़त्म करना शुरू कर देना, क्योंकि इससे जो है आपको फालतू की एंजाइटी नहीं होगी कि ओहो काम तो हो ही नहीं पाया अब क्या करें। फिलहाल ऊंचा लंबा कद फॉरएवर आर आपके रेडियो सेट्स पर, इसे वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ, और कहते रहो जियो बिंदु।

हम जिद्दी दिल और आप बात कर रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा जिद्दी लड़की से जिसने आज अपने भाई और अपने पापा से जो है ये डिस्कशन किया है कि उसका फोन चल नहीं रहा है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसूसन शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जो है जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पे उठा लिया है। अब देखो यार, पता नहीं क्यों कल के बाद जो है, आज सुबह जैसे ही मैं उठी, मेरा फ़ोन जो है वो लैग करने लग गया। उससे कॉल पे जो है आवाज़ नहीं जा रही, उसका कैमरा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा एंड वो ग्लिच भी कर रहा है। अब मतलब मैं कह रही हूँ कि ये प्रॉब्लम है कि मेरे फ़ोन में जो है प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मेरे पापा को पता नहीं क्यों ये सुनाई दे रहा है कि नया आईफोन लॉन्च हो गया है, नया आईफोन लेना है, पता नहीं क्यों। मतलब मैं तो ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मुझे नया आईफोन लेना है, बिकॉज वो आईफोन जो लॉन्च हुए हैं वो देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो नहीं लिया जा सकता, ये उन्होंने बनाए ही इसीलिए है कि कोई ले ना पाए। मतलब मैं तो अगर इतना महंगा आईफोन अगर अपने हाथ में लूँ, फिर मैं उससे रैंडम लोगों को फ़ोन लगा के गॉसिप क्यों करूँगी? फिर मैं जो है बिजनेस जो है वो बढ़ाना चाहूँगी उस फ़ोन से। मैं सिर्फ मिलेनियल्स से बात करूँगी कि मुझे जो है बेसिक बातें करनी ही नहीं है, आप मेरे साथ जो है बहुत महंगी बातें कीजिए तभी मैं इतने महंगे फ़ोन से आपको कॉल लगाऊंगी। वरना मैं जो है अपना फ़ोन यूज़ करती हूँ कि आते हुए बिल्डिंग के नीचे से जो है दूध लेते हुए आ जाना, या जो है ब्रेड ख़त्म हो गया है, या सफाई वाले जो क्लीनिंग जो करानी है उसके कितने पैसे हुए, या मेरा जो 2 रियाल आपने लिए थे वो वापस कर दो, ये सारे कॉल कर रही हूँ मैं। और बताओ, इतने महंगे फ़ोन से, इतने महंगे आईफोन से जब मैं ऐसी बातें करूँगी तो अच्छा लगेगा क्या, बताओ आप ही। तो फिलहाल बहुत रोस्ट करने वाले हैं, क्योंकि पूरा जो एप्पल का इवेंट था, हर एक डिवाइस था, उसको मैंने बहुत क्लोजली देखा। सुबह से लेके शाम तक बस एप्पल एप्पल एप्पल की बात करी है, सबसे इतनी एप्पल एप्पल की बात की है कि आज मैंने वाटरमेलन जूस की जगह एप्पल जूस पिया है सच में। सो जो है आज एप्पल के इवेंट पे क्या कुछ खास हुआ उसकी हम बात करने वाले हैं। सो आप स्टे ट्यून्ड रहिए 3311063 पर मैसेज करके आप अपने ओपिनियंस मुझे बता दीजिए कि जो नए डिवाइसेस लॉन्च किए हैं एप्पल ने, ये आपको कैसे लगे। फिलहाल इश्क मस्ताना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कोशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Time check. Time check. Brought to you by Nanatal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
1: So ji, आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त हो रहे हैं 6:13. That is 6:30. Stay tuned. Jio Bindas.
2: Shopping lovers in Qatar, are you ready? इस वीकेंड तैयार हो जाओ नेस्टो के क्रेजी फिगर्स ऑफर के लिए. Shop at Nesto now for just 5, 10 and 15 Qatari riyals. A huge space filled with wide range of products and most items are available for 5, 10 and 15 riyals. इस प्रमोशन का फायदा आप सिर्फ 10 सितंबर से 13 सितंबर तक ही उठा सकते हैं. वीकेंड शॉपिंग यानी नेस्टो पर शॉपिंग.
3: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
4: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर.
3: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से.
4: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें.
3: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
5: हाय, दिस इज अमिताभ बच्चन एंड यू आर लिसनिंग टू
6: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ऑलिव पर. जियो बिंदास
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
8: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
9: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: जो सारा जमाना है ये हसीनों के साथ साथ आईफोन का भी तो दीवाना है। मतलब मुझे तो कई बार जो है समझ नहीं आता है कि जब फोन बहुत बढ़िया काम कर रहा होता है लेकिन नया आईफोन लॉन्च होते ही इस पुराने आईफोन को क्या हो जाता है, ये कुछ दिन अजीब सा बिहेव क्यों करने लग जाता है। वेलकम जी 106.3 रेडियो एलएफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखो यार, वैसे तो कल टेक शो में शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, लेकिन मस्ती और मज़े के तड़के के साथ। लेकिन मैंने सोचा क्योंकि एप्पल वाला इवेंट हो चुका है तो क्यों ना हम देरी ना करें आईफोन के बारे में बात करने पे। सो सबसे पहले तो जिस चीज़ पे सबसे कम फोकस किया गया था एप्पल के इवेंट पे उसके बारे में बात कर लेते हैं, एंड वो है आईफोन 18 प्रो एंड आईफोन 18 प्रो मैक्स। अब ऑफिशियली मार्केट में जो है ये दोनों फ़ोन उतार दिए गए हैं, तो अगर आप एक मेजर अपग्रेड जो है वो चाह रहे हैं अपने आईफोन में तो आप इसे खरीद सकते हैं। वैसे इतना ईजी नहीं है इसे खरीदना। वैसे इसमें जो चेंजेस हुए उस पर मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि सबसे पहले तो देखिए इसका जो डायनेमिक आइलैंड है, यानी जो ऊपर एक छोटा सा हमें धब्बा सा दिखता था एप्पल में आईफोन में, वो जो है अब छोटा कर दिया गया है। हाँ जी, इस बार सबसे बड़ा विजुअल चेंज जो है वो यही है कि डायनेमिक आइलैंड का जो है साइज लगभग 40-50% तक जो है वो छोटा कर दिया गया है। अब ये सब जो है एडवांस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी को यूज करता है, तो आप एक साथ 3 लाइव एक्टिविटीज ना देख सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स, स्कोर्स या म्यूजिक, नेविगेशन, ये सब ना आप एक साथ ट्रैक कर सकते हो। मतलब 3 एक्टिविटीज को अपने डायनेमिक आइलैंड पे आप देख सकते हो। स्क्रीन के साइज पर भी काफ़ी जो है चेंजेस आए हैं। सो 6.3 इंच और प्रो मैक्स की जो है ये 6.3 है, एंड प्रो मैक्स की 6.9 इंच है। मतलब ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आया है, लेकिन है। ड्यूरेबिलिटी की तो बात देखो हम क्या ही बोलें, फ्रेम को एल्युमिनियम का बनाया गया है, स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, एंड सबसे मेजर चेंज जिस पे लड़कियां सबसे ज़्यादा ध्यान देती हैं, मतलब मैं तो देती हूँ, देखो मैं स्टीरियोटाइप नहीं कर रही हूँ लेकिन मैं देती हूँ ध्यान इस बात पर, और वो है इसका हीरो कलर बर्गंडी, मरून, डार्क चेरी, आप जो कहना चाहें वो कह सकते हैं, ये इसका इस बार का हीरो कलर है। एंड इसके अलावा जो है ग्लेशियर यानी एक ब्लूइश टोन में सिल्वर और ब्लैक कलर में जो है ये आईफोन लॉन्च किया गया है, एंड इस पर जो है सबसे कम फोकस किया गया था। लेकिन जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस था उस पर भी हम बात करेंगे लेकिन थोड़ी सी देर में। फिलहाल आप जो है कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर एंजॉय करके आइए ज़रा, और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर। आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
3: Cool song.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: बिंदास
2: रेडी टू लर्न टू प्ले टू ग्रो
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
4: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Nanatal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
5: Baatein nahi, energy ka booster mil raha hai. Kyunki chal raha hai, zabardast evening. सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
8: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

स्टार्ट आउट. ओ माय गॉड, क्या मस्त, क्या बढ़िया डांस किया भाई इस गाने में. वेलकम जी, 106.3 रेडियो ऑल एफएम. मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त

स्क्रीन जो है वो 5.4 इंच की होती है एंड जैसे ही खुलता है ये 7.6 इंच का हो जाता है. प्रोसेसर एंड परफॉर्मेंस में अमेजिंग है. A20 प्रो चिप है इसमें, वही प्रो चिप जो आईफोन 18 प्रो एंड प्रो मैक्स में यूज करी गई है. एंड कैमरा भी अमेजिंग है, लेकिन एक चीज है जो मुझे काफी बॉदर कर रही है एंड वो है कि मुझे ऐसा लगता है कि इवेंट में इसके केस के ऊपर यानी इसका जो कवर है उस पर इतना फोकस किया गया था कि शायद कंपनी को भी पता है कि भाई ये वाला जो फ़ोन होने वाला है ये काफ़ी नाजुक होने वाला है. तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि ये वाला फ़ोन आप लें तो इसका इसके साथ बहुत केयरफुल रहिए. इसको बिल्कुल ना किसी बेबी की तरह आपको लेकर चलना पड़ेगा. फिलहाल जुगनी गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, ओए लकी लकी ओए से. सो वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना इन्जॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो.

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
2: हाय, आई एम राजकुमार राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओनली 106.3 FM।

0: मैं ना हमेशा यही सोचती थी कि किस तरीके से ये जो शायर है ये जब शेर लिखते हैं तो कितनी खूबसूरती से लिख देते हैं ना कि तेरा तो एक ख्याल ही काफी है, तेरा एक ख्याल ही मुझे खुश कर देता है। एंड मुझे लगता था कि यार ये कैसे हो रहा है, किसी का ख्याल ही तुम्हें कैसे खुश कर सकता है। लेकिन जब तक मैंने पूरा वीक काम नहीं किया एंड जब तक वीकेंड नहीं आया ना तब तक मुझे ये रियलाइज ही नहीं हुआ। अब आप बस वीकेंड आने वाला है ऐसा वर्ड बोल दो और मैं खुश हो जाती हूँ। ख्याल क्या, एक वर्ड भी काफ़ी है। मैं जो है सारे शेर बनाने वाले लोगों से, मतलब सारे शायर से, सारे पोएट से, सबसे रिलेट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अब मैं आपकी इश्क मोहब्बत प्यार के कॉन्सेप्ट से रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे वीकेंड से प्यार है एंड वीकेंड आ चुका है सो बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन एक चीज़ की कमी है एंड वो कमी गानों की थी, वो हम पूरी कर रहे हैं। सो वॉल्यूम बढ़ा के आपकी कशिश के साथ इन्जॉय कीजिए 106.3 रेडियो ऑलिव पर अमेजिंग वाले गाने, ज़बरदस्त इवनिंग शो आप इन्जॉय कर रहे हैं। सो आपकी कशिश के साथ बने रहिए यहीं पर वॉल्यूम बढ़ा कर। थोड़ी सी देर में चुटकी भर सॉन्ग वाला जो कॉन्टेस्ट है वो हम खेलने वाले। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर
2: फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना, फ्रेश है
1: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें।
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।

मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि एक वक्त था, मैं जो है जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब 9th या 10th स्टैंडर्ड में थी एंड अपनी मम्मा के साथ और अपने कजिन्स के साथ समर वेकेशन में ये मूवी देखने के लिए गई थी। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसुशन, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने इन नाजुक कंधों पर उठा रखा है। एंड थोड़ी सी देर में हम जो है खेलने वाले हैं चुटकी भर सॉन्ग, जहाँ पर मैं आपको एक जो है गाना सुनाऊंगी, चुटकी भर गाना सुनाऊंगी, यानी आपको जो है उस गाने को थोड़ा सा सुनकर गेस करना है कि ये गाना जो है कौन सी मूवी का है एंड बेसिकली इस गाने का नाम क्या है। एंड थोड़ा सा मुश्किल है इस बार क्योंकि मैं जो है शाहरुख खान का ही एक गाना लेकर आई हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा टफ गाना होने वाला है, सो आप लोगों को जो है थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, थोड़ी सी देर में सुनाऊंगी। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि आगे बढ़ते हुए कॉकटेल 2 का एक गाना बंदूक 2.0 आपको इन्जॉय करना चाहिए, सो वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना इन्जॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ। एंड उसके साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि रेडियो ऑलिव के आरजे जो है वो आपके वर्क प्लेस में, आपके ऑफिस में आए और आपके साथ बहुत सारा फन फॉलिक मस्ती और मजा करें, तो आप अपने ऑफिस को रजिस्टर कर सकते हैं हैप्पीनेस लाउंज के लिए। हाँ जी, हैप्पीनेस लाउंज हमारी एक्टिविटी है जहां पर हम आएंगे आपके वर्क स्पेस पे, आपके ऑफिसेज में, वहां पे करेंगे बहुत सारा मस्ती मजा आपकी टीम के साथ। सो अगर आप मैनेजर हैं या फिर आप एचआर हैं या फिर आप बिजनेस ओनर हैं तो आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं, बस आपको जो है HL यानी हैप्पीनेस लाउंज जो है उसका शॉर्ट फॉर्म HL लिखकर हमारे व्हाट्सएप पर भेज देना है 3311063 पर। फिलहाल अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: शॉपिंग लवर्स इन कतर आर यू रेडी इस वीकेंड तैयार हो जाओ नेस्टो के क्रेजी फिगर्स ऑफर के लिए शॉप एट नेस्टो नाउ फॉर जस्ट 5, 10 एंड 15 कतरी रियाल्स अ ह्यूज स्पेस फिल्ड विद वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मोस्ट आइटम्स आर अवेलेबल फॉर 5, 10 एंड 15 रियाल्स इस प्रमोशन का फायदा आप सिर्फ 10 सितंबर से 13 सितंबर तक ही उठा सकते हैं वीकेंड शॉपिंग यानी नेस्टो पर शॉपिंग
2: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
3: Zabardast Evening. Make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

देखो समझ कुछ नहीं आया कि इन्होंने क्या बोला है, लेकिन जो भी बोला है बहुत बढ़िया लगा है, एकदम सुर में बोला है एंड हमने जो है थोड़ा सा डांस कर लिया है इस पे, तो बस हमारे लिए परफेक्ट है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ओलिवर, मैं हूँ आपकी कजन शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग। बहुत फास्ट बोल दिया ना मैंने, तो मैं हूँ आपकी कशिश शो आपके लिए जबरदस्त इवनिंग लेकर आ गई हूँ। ये उन लोगों के लिए रिपीट किया है मैंने जो लोग कहते हैं कि यार कशिश आप बहुत फास्ट बात करते हो यार। देखो यार लाइफ में जो है मोमेंट्स बहुत कम है, इसीलिए जल्दी जल्दी सब करने की कोशिश करती हूँ मैं, तो इसीलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन कभी कभी जल्दी बोल देती हूँ। बाकी अब हम थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश करेंगे आप सबके लिए, लेकिन आप इरिटेट मत होना फिर, ठीक है। वैसे वक्त हो गया है चुटकी भर सॉन्ग का, जहाँ पर हम आपको जो है चुटकी भर सॉन्ग सुनाएंगे, यानी थोड़ा सा पार्ट सुनाएंगे आपको एक बहुत ही फेमस गाने का, और आपको जो है हमें बताना है कि ये कौन सी मूवी का है एंड ये जो है कौन सा गाना है। सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए ये वाला गाना, थोड़ा सा पार्ट है लेकिन एंजॉय कीजिए।

हर लड़की का ड्रीम सॉन्ग है यार ये. सो अब लड़कियां, अगर आप लोगों ने मुझे आकर आंसर नहीं दिया तो मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हो जाएगा. 3311063 पर अगर जल्दी से मुझे बता दो कि ये जो गाना है ये कौन सी मूवी का है एंड इस गाने का नाम क्या है. 3311063 इज द नंबर. जल्दी आओ बताओ. फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना सुनिधि चौहान की आवाज में डॉन मूवी से आ रहा है. आपके रेडियो सेट्स पर वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास.

ब्रह्मास्त्र मूवी का सबसे अंडररेटेड ट्रैक रसिया आपने सुना 106.3 रेडियो एलएफएम। वेलकम जी, मैं हूँ आपकी कंसेशन शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग। तो देखिए यार, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे जो है ये पूछा था कि जरा मुझे बताइए ये जो गाना है जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ ये कौन सा है, कौन सी मूवी से है।

आप सब ने बहुत ही ना कान लगाकर और ध्यान लगाकर ये गाना सुना है एंड एंजॉय भी किया है। वेलकम जी। अब देखो यार, बात हम कर लेते हैं

जी हाँ, इस गाने पर भी जो है हम आएंगे थोड़ी सी देर में, ये गाना भी आपको इंजॉय कराएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि किस किस ने हमें बिल्कुल सही सही जवाब दिए हैं। तो इमाद जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, विनायक ने हमें सही आंसर दिया है, ए बी जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है कि मूवी का नाम है यस बॉस, एहसास की ये मूवी है, एंड ए पी जी ने अपना नाम बताया है अनीता, ओके अनीता जी थैंक यू सो मच, असमा जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, फहाद जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, एंड अनाया जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो कंग्रेचुलेशंस, एंड वादे के अनुसार जो गाना मैंने आपको थोड़ा सा सुनाया था उस पर अब आ जाते हैं, एंड जग से लाज गाने का नाम है, कॉकटेल 2 का ये गाना है, सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना इंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Manila's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Gio Bindas.
1: गाय के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ

0: Trek. Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhol.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 8:10 दैट इज 8:10 स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास
0: फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल स्लो कुक्ड मंडी परफेक्टली स्पाइस्ड प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी नो नॉइस नो ड्रामा जस्ट सी फूड डन राइट बीबीक्यू फिश क्रैब्स प्रॉन्स क्राफ्टेड विद पेशेंस सर्व विद प्राइड नानातल पहाड़ द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर सुक वाकिफ अलखोर Shopping lovers in Qatar, are you ready? This weekend, tayar ho jao. Nesto ke crazy figures offer ke liye. Shop at Nesto now for just 5, 10 and 15 Qatari riyals. A huge space filled with wide range of products and most items are available for 5, 10 and 15 riyals. Is promotion ka fayda aap sirf 10 September se 13 September tak hi utha sakte hain. Weekend shopping, yani Nesto par shopping. Nesto, all
2: that you need. Hi, main hoon Vivek Anand Oberoi. Radio. You're listening to Radio Olive, Jio Bindas. I'm in number
3: one, Radio Olive. Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
4: Baatein nahi, energy ka booster mil raha hai. Kyunki chal raha hai, zabardast evening. Sir, Radio Olive pa. Zabardast evening. Jio Bindas.
5: Zabardast evening. Make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets, and department stores where the world comes to shop. Just

0: मैं उस का वेट कर रही थी बट वो आया नहीं, कोई बात नहीं. वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल फॉर, मैं हूँ आपकी कसुशन, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है. अब देखो यार, अक्सर क्या होता है ना कि पहले सोशल मीडिया पे कोई ट्रेंड आता है एंड वो एक दो दिन में पूरा वायरल हो जाता है, सब लोग वो ट्रेंड करने लग जाते हैं एंड उसके बाद फिर शुरू होता है उस ट्रेंड को रोस्ट करने का सिलसिला, यानी उस रोस्ट पर यानी उस ट्रेंड पर रोस्ट वीडियोज बनाना, उसको रोस्ट करते हुए वीडियोज बनाना, मीम्स बनाना कि किस तरीके से ये जो ट्रेंड है कितना क्रिंज है एंड लोग क्यों कर रहे हैं, कितना गलत है. एंड ये अब एक पैटर्न की तरह बन गया है, चाहे कोई भी ट्रेंड हो वो शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, सारे लोग उसे करना शुरू कर देते हैं एंड जब सारे लोग उसे करना शुरू कर देते हैं तब डिफरेंट बनने के चक्कर में कुछ लोग आते हैं और उस ट्रेंड को जो है बुरा बनाने लग जाते हैं, उसको रोस्ट करने लग जाते हैं, जिन लोगों ने उस ट्रेंड को किया है उनको जो है उनका मजाक उड़ाने लग जाते हैं एंड फिर ये ट्रेंड बन जाता है, फिर जो है लोग मतलब रोस्ट करने लग जाते हैं उसको, वो एक ट्रेंड बन जाता है कि किस तरीके से आप इस ट्रेंड को रोस्ट कर सकते हैं. एंड फिर एक ट्रेंड आता है लास्ट में उस ट्रेंड को ख़त्म करने के लिए कि लोग जिन्होंने वो ट्रेंड शुरुआत में शुरू किया होता है वो आते हैं और बोलते हैं कि आप इसे क्रिटिसाइज़ क्यों कर रहे हो, फिर एक लड़ाई होती है एंड फिर वो ट्रेंड ख़त्म हो जाता है. एग्जैक्टली हर चीज़ के साथ आजकल यही हो रहा है एंड यही हुआ वो 80s की चैट जीपीटी वाली इमेजेस के साथ, जहाँ पे लोग अपनी इमेजेस जो है वो क्रिएट कर रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे, सब सेम सेम कपड़े पहने हुए थे, ऐसा लग रहा था कि किसी स्कूल या कॉलेज की यूनिफॉर्म है, सब सेम कपड़ों में फ़ोटोज़ डाल रहे हैं एंड बहुत ही मज़ा आ रहा था वैसे. लेकिन फिर आगे रोस्ट करने वाले जो रोस्ट करने लग गए और बोलने लगे कि यार ये क्या है, सोशल मीडिया खोलता हूँ और 80s में पहुँच जाता हूँ, सोशल मीडिया खोलता हूँ टाइम ट्रेवल कर लेता हूँ एंड बहुत सारी ऐसी बातें हुई. एंड उसके बाद सेलिब्रिटीज जो है वो इस ट्रेंड में कूद पड़े एंड सब अपना अपना ओपिनियन बता रहे हैं. लेकिन सबसे क्यूट मुझे जो है वो लगी है नीतू सिंह जी. नीतू सिंह जी ने जो है ऋषि कपूर जी के साथ अपनी एक बहुत पुरानी फोटो शेयर करी सोशल मीडिया पे एंड उस पे लिखा कि नो फिल्टर्स एक्चुअल 80s. उन्होंने अपनी जवानी की, अपनी बॉबी फिल्म की शूटिंग की जो है अब फोटो जो है उसमें पोस्ट करी एंड दैट इज़ सो सो सो अडोरेबल एंड सो क्यूट. एंड ऋषि जी सच में बहुत चार्मिंग लग रहे हैं, बहुत हैंडसम लग रहे हैं. नीतू जी एज यूजुअल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं. सो ऑफकोर्स यार देखो, मतलब हर ट्रेंड का एक वो क्यूट वाला कोर पार्ट होता है, भले वो कितना भी क्रिंज हो एंड लोगों के हिसाब से कितना भी अनवांटेड हो, बट दिस ट्रेंड इज़ रियली क्यूट. एंड मैंने थोड़े दिन पहले बताया था कि मेरी मम्मा ने, मैंने जब उन्हें उनकी 80s वाली फ़ोटो बना के भेजी तो उन्होंने कह दिया ना कि यार ये तो हम ऐसे ही दिखते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है, तुम्हारी फ़ोटो कोई क्रिएटिव नहीं है. लेकिन फिर आज मैंने देखा कि उन्होंने जो है ना अपने व्हाट्सएप का उसे वो बना लिया है, प्रोफाइल फ़ोटो बना लिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, इसे एंजॉय कीजिए, वॉल्यूम बढ़ाकर. मैं हूं आपकी कशिश, स्टे ट्यून, जियो बिंदास. कूल सॉन्ग
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग.

कोई भी जरूरत नहीं है कि वो कैसा होगा या वो कैसा है, क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ में इंट्रूड करना बहुत गलत बात है। वो कैसा भी हो, उसकी लाइफ में कोई कुछ भी चल रहा हो, अगर वो आपसे शेयर नहीं कर रहा है तो आपका कोई हक नहीं बनता उसे किसी और से शेयर करने का। हाँ जी, मेरे जितने भी गॉसिप पगलूज हैं, मतलब जिन्हें गॉसिप करने की बहुत ज़्यादा आदत है, जिन्हें इधर उधर मतलब एक दूसरे की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में जो है घुसने की बहुत आदत है, उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है मैं बताने वाली हूँ। वेलकम जी, 106.3 रेडियो ऑलिफ पर मैं हूँ आपकी कसोशन शो, आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का भी डाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखिए, आई स्टम्बल अपॉन दिस पोस्ट जिसपे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो लिखी है, एंड मुझे नहीं पता था कतर के बारे में ये सीरियसली, एंड अब जब मैंने ये पोस्ट पढ़ ली है तो ये इज्जत जो है कतर के लिए मेरे दिल में और ज्यादा बढ़ गई है। सो कतर में अपेरेंटली आप जो है किसी के खिलाफ र्यूमर्स जो है वो नहीं फैला सकते, यानी अगर आप किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं तो ये एक यू नो ऑफेंस है, एंड आपको जो है बहुत तगड़ा वाला फाइन देना पड़ सकता है, एंड एक साल की जेल भी हो सकती है। सो अब आपको जो है ब्लॉक के हिसाब से किसी की भी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है मिस इन्फॉर्मेशन बेसिकली यू नो ओपन करने का कोई राइट नहीं है, एंड आप किसी के बारे में कोई भी गलत बात या कोई भी र्यूमर जो है वो नहीं फैला सकते हैं। सो बेसिकली अगर आप किसी की गॉसिप करते हैं, किसी की लाइफ की, किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में कोई भी यू नो ऐसी बात कह रहे हैं जो उन्हें अच्छी नहीं लगेगी एंड जो किसी को नहीं करनी चाहिए, सो अब आप जो है आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको फाइन भी देना पड़े। एंड बेसिकली मुझे ना कदर इसीलिए बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आप जो है अपनी लाइफ में आप फोकस करते हो, अपने करियर पे फोकस करते हो, एंड आप दूसरों को डिस्टर्ब किए बिना अपनी लाइफ जीते हो, मतलब आपको कोई बॉदर नहीं कर रहा, आप किसी को बॉदर नहीं कर रहे, एंड दिस इज सो गुड, दिस इज सो सो सो गुड, एंड दिस इज समथिंग जो बाकी कंट्रीज को जो है कतर से सीखना चाहिए। फिलहाल जो है जन्नत 2 से एक बहुत ही अमेजिंग वाला ट्रैक आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना एंजॉय करो, बातचीत जो है जारी रखेंगे, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: Olive 106.3 FM Gio Bendaz.
1: Ready?
2: Ready!
1: To learn!
2: Yes!
1: To play!
2: Absolutely!
1: To grow!
2: With Maserati!
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
2: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
4: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
7: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

ये दिल ने तो धक धक करना शुरू कर दिया है क्योंकि वीकेंड शुरू हो चुका है। अब ऑफिस से जाएंगे, आप लोग तो खैर पहुंच चुके होंगे या डिनर विनर के लिए निकल गए होंगे क्योंकि कल है वीकेंड। मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो, आप मेरे साथ जबरदस्त इवनिंग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब मेरे यहाँ से जाने का, आपको टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया है। सो मैं चलती हूँ, जाते जाते वही कहूँगी जो हर रोज कहती हूँ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखो, खाना खाते रहो, पानी पीते रहो, एंड हाइड्रेशन का ध्यान रखना है तो अच्छे से पानी पीना एंड सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि कल आप घूमने जाओगे बाहर तो सनस्क्रीन। ओके चलो मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी वीकेंड।

0: hear this.
1: Radio Olive 106.3 FM. You're listening to Club Olive.

mornings and night.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम.
3: Radio Olive 106.3 FM. You're listening to Club Olive.

0: hear this.
1: Radio Olive 106.3 FM. You're listening to Club Olive.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: चांदनी रातें।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है